दोस्ती वो रिश्ता है जिसका कोई मतलब नहीं होता, यानी कि वो अनकंडीशनल लव होता है, उसमें अपनापन होता है। अच्छे दोस्त हमारी खुशियों में मुस्कुराते हैं और मुश्किल वक्त में बिना कहे हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जिंदगी में ऐसे रिश्तों की हमेशा कद्र करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची दोस्ती वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर गुजरते पल के साथ और गहरी होती जाती है।